शुरुआती स्वतंत्र भारत की चुनौतियों को चित्रित करने वाली क्लासिक फिल्मों से लेकर आधुनिक ग्रामीण मुद्दों को संबोधित करने वाली समकालीन कहानियों तक, ये कहानियाँ भारतीय अनुभव पर एक अनूठा और अक्सर सशक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आमिर खान और ग्रेसी सिंह अभिनीत फिल्म लगान भुवन नामक एक जोशीले युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जो ग्रामीणों को उत्पीड़ित ब्रिटिश शासकों को क्रिकेट मैच के लिए चुनौती देने के लिए एकजुट करता है ताकि उन पर लगाए गए अत्यधिक करों को माफ किया जा सके। फिल्म ग्रामीण जीवन के सार समुदाय की एकता और अन्याय के खिलाफ उनके साहसी संघर्ष को खूबसूरती से दर्शाती है। फिल्म को अपने आकर्षक कथानक और शानदार छायांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिल चुकी है। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान, किशोरी गोवारीकर और साथियों की आवाज़ों में।

गांव का खाना और चूल्हे पर बनी ताज़ा रोटी भारतीय ग्रामीण संस्कृति का मुख्य हिस्सा है। खुले चूल्हे, मिट्टी के तवे और देसी घी के साथ बाजरे, मक्के या गेहूं की सौंधी रोटी का स्वाद सेहत और परंपरा दोनों से जुड़ा है। इसी को चित्रित करता शंकर महादेवन और अलका याग्निक का गाया अब ये है नायक फिल्म का गीत।

अब चलते हैं हिमाचल की वादियों की ओर। जी हाँ, ताल फिल्म में हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले की खूबसूरत वादियों और विशेष तौर पर जमुहार व आसपास के ग्रामीण इलाकों को दिखाया गया था। फिल्म में सुंदर पहाड़ी गांव और देवदार के वृक्षों से घिरा इलाका दिखाया गया है। तो आइए चलते हैं इस गीत के ज़रिए इन इलाकों, सुनते हैं ताल फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: इसी के साथ हमारा आज का परागमाला लाइव कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: परागमाला परागमाला
2: परागमाला लाइव शुनिले আগবঢ়ালে গুণপ্রভা বৰাই। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী দুপৰীয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰিৰ সৈতে মই পৰিস্মিতা দিহিঙীয়া।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 1 বজাৰ পৰা হিন্দীত আৰু 1:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत

0: नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजी लॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
0: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं,

0: सभी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम

0: जाना जाएगा। साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र के शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरल में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश

0: होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु रादाब फरायदों अमृत खेरखाथारिया हादरसानि दैबानानि थासारा एसे मोजां जादोंब्लाबो गंजिथाम जिल्लानि गुवार ओनसोला दासिम दैबानानि सिङावनो दं दैबानायाव गं 465 गामिनि 1,55,000 सुबुङा दैबानाजों गोहोम खोख्लैजादों आरो 10,748.64 हेक्टर आबादाया खहा जादों सरायदेव जिल्लायाव मैया सासे सुबुंनि गोथै सह मोननायनि उनाव आथिखालाव दैबानायाव थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 98 जाहैबाय आथिखालाव मोन 55 रैखाथि बादायाव 10,000 बांसिन सुबुङा रैखाथि लाना दं बेनि अनगायैबो मोन 18 अनसुंथाय मदद रानग्रा मिरुआ दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरनो मदद होगासिनो दं बेराफारसे दियां दै मोब्लिब माव बिथांखिनिफ्राय फारियै दै हगारबाय थानायनि जाहोनाव गलाघाट जिल्लानि गेजेरजों बोहैलांनाय दैमानि दैया गिख्रंथाव सिमानि साजों बोहैगासिनो दं गलाघाटनि दै सम्पद बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला बे जिल्लायाव धनस्रि गलाबिल आरो दियां दैमानि दै बोहैनाया गिख्रंथाव सिमानि सायाव बोहैगासिनो दं खुंथाया दै सेरफां ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि थानो हांख्रायदों श्रीभूमि जिल्लायावबो कुसियारा दैमानि दैया गिख्रंथाव सिमानि साजों बोहैगासिनो खर' आसामनि मोनब्रै जिल्लानि बावैसोनि दैबानानि खहा जानायखौ गोबारै आन्जाद खालामनाय आरो बिगियानारि जरिबखौ रोखा खालामनो थाखाय हादरसा सरकारा जर'खा लाहा लादों जरहाटनि सिनाराम सन्मिलन मिरुआव मैया गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव शिबसागर सरायदेव जरहाट आरो गलाघाट जिल्लायाव जानांनाय खहानि गोबारै सुमोन्थाय खालामनो थाखाय थियारि खालामनाय मबाइल एप्लिकेशन बाहायनायनि फोरोंथाय हाबाफारि जायो बे राहाया दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाय मदद होनाय आरो फिन गसंफिननाय मावफारिखौ बांसिन गोख्रों आरो आब्रुद खालामनायाव जर'खाय हेफाजाब होगोन होन्ना मिजिंथिनाय जादों हाबाफारिनि उनाव खौरांगिरि सिङाव गिबि मन्त्रि ड शर्माया बुङोदि गाबोन दैबानायाव खहा जानांनायनि जरिब खालामनाय जागोन आरो बे जरिबाव बाहागो लानाय मावख'ग्राफोरनि थाखाय मियानिफ्रायनो जिल्ला थोरफोआव फोरोंथाय होनाय जादों गिबि थोरफोनि जरिबा फैगौ 30 आगस्टसिम सोलिगोन होन्ना गिबि मन्त्रिया फोरमायदों बेराफारसे दैबानाजों खहा जानांनाय ओनसोलफोरनि फरायसालिफोरनि गुदि फाहामफिननायनि थाखाय सरकारा बावैसो रां होनायनि बाथ्राखौ मख'नानै गिबि मन्त्रिया बुङोदि बैफोर फरायसालियाव फैगौ 10 आगस्टआव फिन फरा फोरोंफिननाय जाफिनसिगोन आसाम सरकारनि आदार रायजोयारि रानग्रा बायग्रा बिफान समबाय बिफाननि मन्त्रि कौशिक राया दिनै डिब्रुगड़ जिल्लानि माइ बायग्रा मिरु कन्ट्रल बेसेननि गला गामि पंचायत समबाय समितिखौ नायदिङो बेनि उनावनो मन्त्रि राया न' लुनाय आरो नोगोर सोमोन्दोआरि बिफाननि सिङाव डिब्रुगड़ पौर निगम ओनसोलाव लुबाय थानाय एबा लुफुंनाय गुबुन गुबुन मावबिथांखिखौ नायदिंगोन मन्त्रि राया बेनि उनाव डिब्रुगड़ जिल्ला भारतीय जनता पार्टीनि मावख' नायदिंनायजों लोगोसे बेलासियाव न' लुनाय आरो नोगोर सोमोन्दोआरि बिफान आदार

रायजोआरि राननाय बायग्रा सोमोन्दोआरि बिफान आरो समबाय बिफाननि मोनसे बिसावराय जथुमाव बाहागो लागोन। डिब्रुगड़ जिल्लानि जिल्ला खुंगिरिनि मावख'आव जथुमा जागोन। बिनि सिगांनो मन्त्री कौशिक राया मैया डिब्रुगड़ जिल्लानि नावरकटियायाव नुजाथिनानै बिफानारि गुबुन गुबुन बिथिंनि सोमोन्दै सावरायलायो। मन्त्री राय बिथाङा मैया धेमाजि जिल्लानि सिलापथर पौरसभानि सिङाव मावफुंबाय थानाय माखासे गोनांथि गोनां मावबिथांखिफोरखौबो नायदिङो। उदांस्रि साननि सिगां मैया हादरसा सरकारनि पुलिस खुंथायखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायो। नखर बिफाना जारि खालामनाय मोनसे बिथोन बायदि आसाम पुलिसनि माखासे गोजौ थाखोनि मावख'ग्राफोरनो गोदान बिबान होनाय जादों। बेबायदियै जर'खा दालायनि DIG रत्न सिंहाखौ मासि जौगाहोना जर'खा दालायनि IGP महरै थिसननाय जादों। बेराफारसे जर'खा दालायनि सिगांनि IGP कनकन ज्योति शइकियाखौ जरहाटनि सानजा मण्डलनि IGP महरै ट्रेन्सफार हरनाय जादों। तेजपुरनि साहा मण्डलनि IGP प्रशान्त सागर सांमाइखौ आसाम अर आरो हरखाब समनि सिबिथायनि IGP महरै ट्रेन्सफार हरनाय जादों। बङाइगाव सोनाब मण्डलनि विजयगिरि कुलिंगामनो BTC IGP बिबान होनाय जादों। हजाइनि गागि पुलिस बेंगिरि भिर्रा भेंकाता राकेश रेड्डीखौ नगाव जिल्लानि गोदान गागि पुलिस बेंगिरि थिसननाय जादों। नगावनि सिगांनि SSP पार्थप्रतिम दासखौ कासार जिल्लानि SSP महरै ट्रेन्सफार हरनाय जादों। आसाम फरेन्सिक विज्ञान बिथोनखौनि मावफुं बिथोनगिरि स्वप्न निल डेकाखौ गलाघाटनि SSP महरै ट्रेन्सफार हरनाय जादों। दरंनि SSP ड. रबिन कुमारखौ आसाम पुलिसनि DIG महरै थिसननाय जादों। मरिगावनि SSP प्रकाश हनुवालखौ धेमाजिनि गोदान SSP महरै ट्रेन्सफार हरनाय जादों। माजुलि जिल्लानि आफां माजुलिनि महरै सुक गामिनि आखाइदामिन महरगिरि रिति दलेया हायुङारि आखाइदामिन बान्था 2025 मोननो हादों। मैया 12थि आखाइदामिन सानजों लोब्बा लाखिना गोदान दिल्लीयाव बानजायनाय हाबाफारियाव महरगिरि बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जायो। महरगिरि मुस्रिमा हादरगिरि मुस्रिमा द्रौपदी मुर्मुआ मैया राष्ट्रपति भवननि हारिमुआरि मिरुआव दिव्यांग रिति दलेनो बे बान्थाखौ होयो। मख'नो गोनांनि सि दाग्रा महरगिरि रिति दलेया गावनि आखाइजों दानाय सिल्क गेर' आरो गुबुन गुबुन दोरोङारि सि गानग्रा जोमग्रानि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हायो। बिथांनो बे बान्था होनायाव माजुलिनि सि दाग्रा महरगिरिफोरनि गेजेराव रंजाखांनाय नुनो मोन्दों। हादरसानि गुबुन गुबुन साथाम आखाइ दामिन महरगिरि रुनिमा सेतिया चौधुरी ज्योति भुया आरो जुगल भरालिया आखाइ दामिन खोन्दोआव बिहोमा होनायनि थाखाय आरो साबसिन कारिकरि हारोंथायनि थाखाय बान्था होबावनाय जायो। आसाम गुवाहाटी आसाम क्रिकेट एस'सियेसन स्टेडियामाव जालांनाय APL बादायलायनायाव बराक लेजेन्सआ सराइदाव सानराइजार्सखौ 8 विकेटआव फेजेनो। बराक लेजेन्स सानजाया 125 राननि थांखि होसोना 18 अभार मोनब्रै बलाव 2 विकेट खोमाना देरहासारनो हायो। बेनि सिगां सराइदेव सानराइजार्सआ गिबियाव बेट हमना थिखानाय 20 अभाराव गासै विकेट खोमाना 124 रानल' बुथुमनो हायो। गुबुन मोनसे बादायलायनायाव बरपेटा ब्रेव्सआ नगाव रेन्जार्सखौ 70 रानाव फेजेनो। रादाबा एसेनोसै।

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोनदों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिनिमाइफनि 411.5 मिटाराव आरो FM बेन्डनि 101.6 मेगाहार्जआव

बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्सआव आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्सआव रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दं। लोगोसे निउज अन एयार मबाइल एप आरो एआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दं। दिनै स्टुडिय'आव दं आं अमृत खेरखातारि। दाननि सनाव नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनसिगोन। आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु फोसावनो लादों रंजालि गथ'फोरनि आयदा। बे आयदायाव दिनै नोंथांमोना खोनासंदो आवगोलावनो फोसावखांनाय सानजा कालाइगाव आलायारन फरायसालिनि रंजालि गथ'फोरनि आयदाखौ। हान्जाखौ दैदेनदों बकुल बर'आ।

गिबियावनो दुलाराय खोनासंग्रा नोंथांमोननिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनै जों कलाइगाव आलायारन फरायसालि रंजालि गथ'फोर आयदाखौ दोंसे हान्जा मेथाइजों बेखेवनो लाबाय नै।

0: बाय नोंनि मुङा मा
1: होमबा आंना मुसिफ्रा
0: नोङो मा खालामनो सानदों
1: आं दुंसे घन्टा आवरायगोन
0: दिनै आवरायनायसै
1: बे आंनि गामि जुबुर मोजां मोनो बय आंना जोंहा बेरायनो थांनो मेसेजि समायना बय आंखार सामुरबा माजों थांनो बुंथा नखन नखन नुनो मोनो गय बायनि बारे राजल सुहाना जों दाना जों सुरे सुरे
0: फंबाय नोंनि मुङा मा
2: खुलुमबाय आंनि मुङा मुसे सान्दोबारा
0: नों मा खालामनो सान्दों
2: आं दंसे आं लिसन दावारागोन
0: देनाय आवरायनायसै
2: जोने जोने आसबाब

0: थाबायखोर फंबाय नोंनि मुङा मा
1: खुलुमबा मुङा
0: नोङो मा खालामनो सानदों
1: आं बिनसेखोन दारायगोन
0: देना आवरायनोसे
1: जे लुइ थाम दामुजे जासुबों गामब्रै बादो आब्राम जायदोदारा स्ने गांगो फालियोनो दालबिसा गो खुलुमबाय
0: थाबायखोर आनाव नोंनि मुङा मा
2: खुलुमबाय मुङा थाना माबरा
0: नोङो मा खालामनो सानदों
2: आं दुमचां खन्थारागो
0: देना आवरायनोसे
2: थालिजा थाजुजा आपेल आंगुजा फिथा सामथा जानानो बुलु गुराजा
0: साबायखोर
2: खुलुमबाय
0: फंबाय नोंनि मुङा मा
3: खुलुमबाय आंनि मुङा श्रीसंग

0: मा खालामनो सान्दों
1: से खन्थायराइगोन
0: देना आवरायनोसे
1: गुदै बिथाय गुखय बिथाय आरो रुपा बिथाय बिथाय जबला थाजिन जायो एम बुलु मुनु गुमुन गुमुन बिथाय आरो एम फोर गां फोरना सिखिरिया हानजा हानजा बिरो खुलुमबाय
0: जाबाय ख आनाव नोंसोरनि मुङा मा मा
1: खुलुमबाय आंनि मुङा सयना हानासि ब्रो
0: नोंसोरो मा खालामनो सान्दों
1: जों दुमसा बैसागु मेथाइ खनगोन
0: मेथाइ खननायसाय

एसेसम नोंथांमोना रंजालि गथ'फोरनि आयदायाव सानजा गालायगाव आलायारन फरायसालिनि रंजालि गथ'फोरनि आयदाखौ खोनामोनबाय। हान्जाखौ दैदेनदोंमोन बकुल बर'आ। मेथाइनि आयदायाव दानिया खोनासंदों भुवनेश्वर महिलारि आरो रीना दास महिलारिनि गाराङाव नैबे जावजा गोदान मेथाइखौ सुजुदों उत्तम चन्द्र खेरखाथारिया।

एसे सम नोंथांमोना भुवनेश्वर महिलारी आरो रीना दास महिलारीनि गाराङाव जावजा गोदान मेथाइ खोनानोनबाय। मेथाइनि आयदायाव दाना खोनासंदो सुलेखा बसुमतारीनि गाराङाव खगेन बिहारी दैमारिया सुजुनाय नैबे गोदान मेथाइखौ।

एसा सम नोंथांमोना सुलेखा बसुमतारी गाराङाव खगेन बिहारि दैमारिया सुजुनायनि बे गोदान मेथाइखौ खोनानो मोनबाय। मेथाइनि आयदा अनदानाया खोनासंदो नंगुबै रामसियारि आरो हान्जानि गाराङाव नैबे खुगा मेथाइखौ।

आच्चा सम नोंथांमोना नंगुबै रामसियारि गाराङाव खुगा मेथाइ खोनाबाय बेजों लोगोसे मेथाइनि आयदायाबो एसेनोसै आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु सम जाना फैनाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम अननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि बर' आफादखौ एसेयावनो थुंगायनाय जाबाय गोजोन्थों।

0: এই আকাশমণি গুৱাহাটীৰ মহাপাহু। আমাৰ পাছৰ অনুষ্ঠান হিন্দীত শুনিবলৈ পাব।
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का महाबाहु चैनल है। आज के हिंदी पाठ में हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। राजू, राजू के लिए जूते लाया। राजू ने जूते पहने और सबको दिखाए। सबको राजू के जूते पसंद आए। राजू के जूतों की प्रशंसा सुनकर राजू बहुत प्रसन्न हुआ। उपर्युक्त अनुच्छेद पढ़ने में कुछ अटपटा लगता है, क्योंकि इसमें राजू संझा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग को सर्वनाम की सहायता से कम किया जा सकता है, तब यह अनुच्छेद अटपटा नहीं लगेगा। जैसे राजू अपने लिए जूते लाया, उसने उन्हें पहना और सबको दिखाए। सबको उसके जूते पसंद आए। अपने जूतों की प्रशंसा सुनकर वह बहुत खुश हुआ। आपने देखा कि राजू संझा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द अपने, उसने, उन्हें, उसके इत्यादि के प्रयोग से वाक्य सरल एवं सुग्राह्य हो गया है। सर्वनाम का मुख्य कार्य पुनरुक्ति या पुनः प्रयोग दोष दूर कर संज्ञा के बदले उसका अर्थ देना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सामान्य तौर पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय अथवा संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने से पूर्व हमें भाषा के प्रमुख अंग संवाद डायलॉग को समझना होगा। संवाद शब्द सम प्लस वाद के संयोग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यकवाद, अर्थात बातचीत। बातचीत के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। बोलने वाला अर्थात वक्ता तथा सुनने वाला अर्थात श्रोता। प्रायः वक्ता और श्रोता अपने बारे में अथवा किसी अनुपस्थित अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ऐसी स्थिति में तीनों ही व्यक्ति पुरुष, वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्राणी, पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता को उत्तम पुरुष तथा श्रोता को मध्यम पुरुष भी कहा जाता है। अतः उपरोक्त परिभाषा के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रमुख भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण, मैं हिंदी पढ़ता हूं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए इत्यादि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग श्रोता के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। उदाहरण, तुम्हारा भाई कहां रहता है, तुम्हें प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए इत्यादि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन

प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अथवा श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, इसका, उनका आदि। उदाहरण, वह तुम्हें याद करता है, उन्हें सबका स्नेह मिला था, इत्यादि। निश्चय अथवा संकेतवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रायः इस बोध हेतु

0: को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यह बोध अथवा संकेत समीप के व्यक्ति वस्तु का भी हो सकता है तथा दूर के व्यक्ति वस्तुओं का भी। दूरवर्ती व्यक्ति वस्तु के लिए वह तथा समीपवर्ती व्यक्ति वस्तु के लिए यह का प्रयोग होता है। उदाहरण, उन्हें बुला लाओ, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में इस अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए प्रायः कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, विद्यालय में कुछ खा लेना, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु या घटना आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में प्रायः कौन व्यक्ति के लिए तथा कहां, क्या, कौन सा, कौन सी आदि सर्वनाम वस्तु घटना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण, आज तुम्हें क्या चाहिए, ऊपर छत पर कौन बैठा है, इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रधान वाक्य के साथ किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वाक्य में सदैव परस्पर पास पास होते हैं तथा एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसे जोसो, जिसकी उसकी, जिसका उसका, जो वह आदि। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा, इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अर्थात अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में निजता व्यक्त करने हेतु प्राय आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, कवि ने स्वयं कविता सुनाई, इत्यादि। ऐसे विभिन्न सर्वनाम हैं जिनका उपयोग हम एकवचन और बहुवचन संज्ञाओं के लिए करते हैं, जैसे एक वचन के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, वह, उसका, उसे, यह, इसे और किसे। बहुवचन के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द हम, हमारा, हमें, हम लोग, तुम लोग, तुम लोगों का, ये, वे, उनका, उन्हें, इन्हें और किन्हें। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे दोहराते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे आगे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। हम आकाशवाणी गुवाहाटी के महाबाहु चैनल पर ऐसे ही लेसन लाते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।
1: हिंदी भाषा शिक्षार पाठ অনুষ্ঠানটি শুনিলে আজ অনুষ্ঠানত সর্বনামৰ তৃতীয় ভাগ আগবঢ়ালে অম্লানজ্যোতি দেৱচৌধুৰীয়ে। এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু নিবেদন কৰা হৈছে এটি বৃন্দগান, গীত ৰচনা তফজুল আলীৰ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यून

0: দিগন্ত কলিতাৰ কণ্ঠত পাঁচ ছয় শ্ৰব্যসংকলনৰ গীতটি শুনিলে। এই গীতটিৰে সামৰা হ'ল আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠানটি। এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 8:45 পৰা সমাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी

0: करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक

0: तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक

0: नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की।

0: है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गांवों में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত 730 কিলোহাৰ্টজত আৰু এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত। শ্ৰোতাসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান সমান্তৰালভাৱে শুনি আছে নিউজ অন এয়াৰ মোবাইল এপটো।

0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু, এতিয়া অখিল ভাৰতীয় সংগীতানুষ্ঠান দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ये आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की, उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
2: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
1: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishen जपताल और द्रुत तिंताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्री।
2: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिन्स हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्री, इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू जपताल एंड द्रुत तिंताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री। आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लपा बजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 868 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद आप ठीक 11 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज

बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।